0: connect your dream, connect your future, still connect your heart.
1: Connect Australian Education and Visa Services. शिक्षा गंडकी चार तुलिगोड़ा वाट इन डिपार्टमेंट भवन संदई मोबाइल अंठानबे पांच साठी बत्तीस चार सी तिरानबे और अंठानबे पांच साठी अड़तीस शून्य

0: स्वास्थ्य देखें यही आउदो जेठ 30 गते शनिवार एस वीरेन्द्र स्वास्थ्य क्लिनिक धुलेगौड़ा में
1: पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा में कार्यरत वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर संतोषी थपलिया बिरामी स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार का आने भाई स्त्री तथा प्रजनन संबंधी रोग वा कुछ किसिम का समस्या भाग बिरामी समयमय उपचार सेवा दी मौका को फायदा लिन्हला
0: उपचार होने रोग गर्भवती महिला को स्वास्थ्य चेक जांच महीनावारी गड़बड़ी तल्लो पेट दुखने फोहर पानी बग्ने गनाउने र चिलाउने बाँझोपन स्तन में गिर्खा गाँठा गुठी महिलाहरूमा हुने सम्पूर्ण समस्याहरूको चेक जांच तथा परामर्श साथ ही प्रत्येक दिन सीनियर कंसल्टेन्ट रेडियोलॉजिस्ट डाक्टर सुरेन्द्र आचार्य पेट छाती सहित सम्पूर्ण अंग को भिडियो एक्सरे एनएमओली स्कैन कर साथ ही प्रत्येक दिन ईसीजी यूएससी तथा गुणस्तरीय ल्याब सेवा दिइन्छ
2: वीरेन्द्र स्वास्थ्य क्लिनिक शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा संपर्क 065-4-14-233
1: 98-78-61-887

0: connect your dream, connect your future. Steel, connect your heart.
1: Connect Australian Education and Visa Services. शिक्षकांडकी चार तुरी नोडा वाटिन डिपार्टमेंट भवन संगई मोबाइल अंतर्गते पांच साथी 32 चार सिक्किरण भी रो अंतर्गते पांच साथी 32 शून्य 33

0: एक्सरे तीन फोटो आर्ट अंटरमेंट को आवाज
1: स्टूडियो बिहार को 9 बजे टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेलपोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो घर गहना नया गहना संग साटफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोलबाराही 103.8 मेगाहर्ज
1: स्टुडियो टाइम अहिले दिउँसोको 1 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पो चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 93301

0: 103 थुप्लो 8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टुडियो टाइमचेक अहिले रातिको 9 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापावाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो घर गहना नया गहना संग साटफेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301
3: जुन दिन बाट स्तब्ध छ यो मुटु जुन दृश्यबाट त्रसित छन् यी आँखाहरू मेरा प्रेमी र भावनाहरू बिरामी भएर ढलेका छन् जिउन चाहन्छन् मेरा बिरामी शब्दहरू

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टुडियो टाइम अहिले बिहानको 5 बज्यो।
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301।

0: connect your dream, connect your future, STEAL, connect your heart.
1: Connect Australian Education and Visa Services. शिक्षा गंडकी चार तुले गोड़ा वाट इन डिपार्टमेंट भवन संगई मोबाइल अंधानवे पांच साथी 32 4 93 और अंधानवे पांच साथी 38 0 3